रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे,
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप अब भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-400-6418-0-7178 1-800-180-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
0: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
1: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
0: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
1: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
0: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
1: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन
0: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
0: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
3: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

0: 끊어놔요.
1: आज का मौसम कैसा होगा? जैसा आपने सोचा वैसा होगा. It's mostly sunny for today. आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस.
2: वेदर अपडेट.
1: कहते हैं ना, चिराग बुझने से पहले जोर की लो मारता है. सो जस्ट अगस्त इज ऑन इट्स मेट्स एंड मौसम और गर्मी जो है अपना फायर नहीं वाइल्ड फायर दिखा रही है. रात ही मिस्टर फोन उसका फर्स्ट थिंग वाज टू आस्क ज़ूस वहां से कितना टेम्परेचर है, कैसा टेम्परेचर है. एंड इट वाज फुल ऑफ इंटेंस हीट, ह्यूमिड एंड पसीना. और उसी वहां का योरस गसा का सीरीज बना लो गर्म क्यों है.
2: वेदर अपडेट.
1: वन नाइन चैनल गाइडिंग इस वन द वन हाया वन क्या लो रात का सो क्या करो ये चुकादरतन. मगर अस्त पे सोचो अगर अस कुल कटो ना मौजूदा थोड़ा खुदा सदि तरफ रहम आ पे फिलहाल रब कर रहम सारे. आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 32 डिग्रीज. इट्स सनी फॉर टुडे. बीच बीच में देर आर चांस कि सूरज को बादल ढक सकते हैं.
2: रेडियो चिना रेडियो रेडियो चिना वेदर अपडेट.
1: यूवी इंडेक्स वीक पर ह्यूमिडिटी 72%, विंड स्पीड 0 पर विजिबिलिटी 4 किलोमीटर. आज का सनराइज हुआ 5:41 पर, आज का सनसेट होगा 7:22 पर. रेडियो चैनल 90.4 एफएम फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चैनल को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर. जी हाँ, डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या स्टोर से. सर्च करें रेडियो चैनल 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन. प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर सर्च करें रेडियो चैनल 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन. ऐप फ्री है, डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में. और ज्यादा मजीद जानकारी के लिए लॉग इन टू www.radiochinar.com. मैं हूं जॉक्सू से मजदूर शो वॉट्सअप. स्नेहक दरकाते रहो.

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
1: डस्ट टू डस्ट एंड एशेस टू एशेस, मे हर सोल रेस्ट इन पीस।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Jeremy. Chinar Beats ve Darce Diva. Only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल ऑन व्हाट्सएप।

रेडियो चुनाव 90.4 FM कहत यानी और लोगों ने भी ये बात है मानी कि उज्जैनी वायरल है तो वो सब पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए आपको बताते हैं एक पोस्ट जो रहा वायरल, टाइमरी रेस्क्यू जिसने एक मेजर एक्सीडेंट को बचाया। एक लोडेड ट्रक जो कि रेलवे ट्रैक्स पर जाकर ब्रेक डाउन हो गया। जी हाँ, ये किस्सा है मकरोनिया गुड्डा रेलवे क्रॉसिंग सागर मध्य प्रदेश का। जहाँ पर एक ट्रेन गुजरने वाली थी और उससे पहले जब ट्रक रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस कर रहा था तो ब्रेक डाउन हो गया ट्रक, लेकिन वहां पर मौजूद थी सुपर हीरोज की फौज। 10th बटालियन स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस QRF टीम जिन्होंने लोकल रेजिडेंट से मिलकर गाड़ी को पुश किया और उस हेवी ट्रक को साबुत के साबुत सामान के साथ धकेल कर हटा दिया उस रेलवे ट्रैक से। जी हाँ, आप समझ सकते हैं मौके की इंटेंसिटी क्या है कि यहाँ से रेल आ रही है, यहाँ से लोग और माल से लदा हुआ ट्रक जो कि पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है रेलवे ट्रैक्स पर ही जा रुका है। आप समझ सकते हैं कितना मेजर एक्सीडेंट था। और QRF टीम की इस 10th बटालियन स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस की QRF टीम जिन्होंने मौके पर हिम्मत दिखाई जैसा कि वो हर बार करते हैं, जैसे हमारे देश की सेना हर बार करती है, हिम्मत दिखाते हुए उस ट्रक को धकेला और इस मेजर एक्सीडेंट को टाल दिया। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन वायरल था तभी व्हाट्सएप पर है। मैं हूं जॉक्सूस, रेडियो चुनाव 90.4 FM, सिरे हुक्ड, धड़काते रहो।

का प्रमाण है। औरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो हिंदू महान है। जिंदगी हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

0: थी असरा, हंगामा होगा तब।
1: असरा आ गई तो
0: करो हंगामा आज असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: दोस्तों हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है व्हाटएवर यू आर बी अ गुड वन। और दिल की धड़कन रेडियो चिनार सिटी हक धड़काते रहो।

हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।

0: Dios.
1: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चना 90.4 एफएम आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप शो में. आज हम आपके साथ किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये तो जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके भेजी मैसेज सब तक पहुंचाएंगे. जी हमारे साथ जुड़ी हैं सोबिया सोफी. लिखती हैं सोबिया सोफी इंस्टाग्राम के थ्रू. इन्होंने डीएम किया था. हाँ डीएम बेवक्त सा आया, थोड़ा सा शो ख़त्म होने के बाद क्या है मंज मंच राम बन इस मैसेज ऐसा फंसा मंज. बट पॉइंट इज आई होप दैट सोबिया इज लिसनिंग टू माय शो राइट नाउ. और इन्होंने लिखा भी है कि रोज शो सुनती हैं ऐप के थ्रू, श्रीनगर से है और श्रीनगर से कनेक्टेड रहती है रेडियो चिनार के साथ सोशल मीडिया पर भी और ऐप्स के थ्रू भी. सो सोबिया वेलकम टू द फैमिली. एंड सेकंड थिंग इज दिस कि इन्होंने लिखा है शो अच्छा है, शो अच्छा लगता है, आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हूँ, कमेंट भी करती हूँ, लाइक भी करती हूँ. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चे. दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करो जिंदगी में, आगे बनो परी बन के उठती रहो और यहाँ भी जाओ छा जाओ. रेडियो चुनाव 90.4 एफएम तो इतना ही क्यों पानी निकलता है इस तरह बात नहीं तो 8899904904 नंबर 8899904904 आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज. अब भैया टॉपिक की तरफ आए तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो इंसान सुनता है. आजकल इंस्टाग्राम पे है, सोशल मीडिया पर है तो बहुत कहानियां सुने लबा, लेकिन उसके बाद इंसान इस अचंभे में पड़ जाता है कि क्या यह सच है या झूठ. ना करो अपने दिमाग से कुश्ती, क्योंकि हम करेंगे इन कहानियों की पुष्टि. जी हाँ आज हम बताएंगे आपको ट्रेंडिंग बट ट्रू स्टोरीज, ऐसी कहानियां जो आपने कभी ना कभी तो सुनी होगी लेकिन सच है या नहीं. हम बताएंगे उनका बैकग्राउंड आपको. रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ जॉक ज्यूस, मजेदार शो व्हाट्सएप से धड़का दे रहा हूँ. टॉपिक से रिलेटेड बताने के लिए, अपनी बात हम तक पहुँचाने के लिए और पहुँचाने के लिए अपनी वाणी वहाँ वहाँ जहाँ तक है रेडियो चुनार की फ्रीक्वेंसी जानी. याद रखिए 8899904904 इज द नंबर. आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज, डीएम भी कर सकते हैं. हम इंस्टाग्राम पर ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से मिलूंगा. और दिल की धड़कन रेडियो चैनल सिटी हुक्ड मेरी जान.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दे।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: 是 Zeus，
1: 跟我来啊
2: Zeus。
3: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल के धड़कन एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप व्हाट्सअप शो में आज हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग एंड ट्रू स्टोरीज की। जी हाँ, अगर आपने ये कहानी नहीं सुनी या सुनी है और आपके दिमाग में यह अचंभा है कि क्या ये मुर्गा सच में खड़ा जैसे खंबा है, तो आपको बता दूं ये कहानी है माइक द हेडलेस चिकन की। 1945 में केस सामने पेश आया जब कोलोराडो के एक वामन ने अपने चिकन माइक की गर्दन काटी। भैया ये था कि डिनर में पकाएंगे, मुर्गा खाएंगे, लेकिन उन्होंने मिस कर दी जगलोवेन। अब जगलोवेन ऐसा है कि जो सप्लाई देती है बॉडी का, दिमाग का, दिमाग से बॉडी का, आपस में जो बॉडी और दिमाग का तालमेल है ये

तालमेल बिठाती है जगलोवेन। और उसके बाद क्या, ये सरकटा मुर्गा, जी हाँ, घूमता रहा, आत्मा नहीं बल्कि मुर्गा बन के ही घूमता रहा। ज्यादा ना हाइप नहीं लिया करो। तो ये माइक नाम का मुर्गा 18 महीने तक ऐसे ही बिना सर के घूमता रहा और ये सरकटा मुर्गा बड़ा ही मशहूर हो गया, मतलब शाहरुख सलमान से भी ज्यादा मशहूर। और इसके किस्से जो है पूरे कोलोराडो में सभी ने देखे और सब इसके दर्शन के लिए आए और उसे लिक्विड खाना खिलाया गया और वो भी सीधा अशफ फैगस के थ्रू। अब ये कहानी आज भी गूंजती है क्योंकि आज भी मुर्गा मरा हुआ माइक लोगों के दिलों में खुकड़ों को करता रहता है। हॉट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन कुकड़ू को मतलब आप बने रहें, सुनते रहें, धड़काते रहें, सड़े हक टन जॉक्स के साथ शो वॉस अप मेरी जान, धड़काते रहो।

0: रेडियो चुनाव 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chunar 90.4 FM. 4 FM. 4 FM.
1: What is frequency of North Kashmir? आप enjoy कर रहे हैं मजदार शो वासा. वो सब शो में अगली पेश

बॉलीवुड न्यूज एंड टेक टॉक्स। जी हाँ, बॉलीवुड से तड़कती फड़कती खबरों से लेकर टेक वर्ल्ड से अपडेट्स कुछ ही देर में आप तक पहुंचाए जाएंगे। जरा सा इंतजार, देते रहो प्यार, जग्स के साथ सिरहट धड़काते रहो, हर दिल की धड़कन को

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ¿Cómo la veo?
1: Bollywood News. Bollywood News.
2: The street is on 90.4 FM. Bollywood News. जी हाँ, बॉलीवुड न्यूज़। और बॉलीवुड न्यूज़ में आइए चर्चा करते हैं एक्टर अमजद खान की। अगर आप भी उस जनरेशन में से हैं जो अमजद खान नहीं जानते, आपको बता दूं कि गब्बर सिंह तो आपने नाम सुना ही होगा। जी हाँ, गब्बर सिंह एक ऐसा आइकॉनिक रोल जिस पर एक मूवी पूरी की पूरी साबुत की साबुत छापी गई। अब शोले की बैक स्टोरी यह है कि सलीम खान और जावेद खान ने अमजद खान को इस रोल के लिए रिकमेंड किया और एक्टर अमजद खान उसके बाद सलीम खान के साथ कभी काम नहीं कर पाए क्योंकि रूठ गए थे। अभी किस्सा है मूवी सेट्स का। जब शोले की शूटिंग हो रही थी तो अमजद खान को दिया मौका और डायरेक्टर के सामने रेकमेंड किया, लेकिन पहले दो चार सीक्वेंसेस या शूट्स पर अमजद खान कुछ कर नहीं पाए एंड सलीम खान एंड जावेद खान वाज लाइक हमने इसे रेकमेंड क्यों ही किया, नहीं करना चाहिए था। और फिर ये जो बात है अमजद खान तक पहुंची और सर अमजद खान ने इस तरह से उस रोल के साथ जस्टिस किया कि वो एक आइकॉनिक फिगर बन गया और आज भी लोग गब्बर सिंह की बात करते हैं। मतलब ऐसी एक्टिंग, ऐसी अदाकारी कि दिलों पे छवप दिया उस रोल को। और उसके बाद अमजद खान जब इस दुनिया से चले गए, देन सलीम खान वॉज द वन जिन्होंने उनके लास्ट राइट्स के लिए खर्चा किया, पैसे दिए और शाना बशाना उनकी फैमिली के साथ खड़े भी रहे। जब सलीम खान से पूछा गया, उन्होंने कहा कि नो मैटर व्हाट हमारे डिफरेंसेस क्या हैं, लेकिन बावजूद इसके भी इट्स माय ड्यूटी कि मैं अपने एक्टर के लिए, साथी के लिए खड़ा रहूं और हम सारे एकजुट रहें। यहाँ ऐसा आइकॉनिक रोल शायद ही कभी फिर से रिपीट किया जा सकता है या फिर से कभी ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा जहां पर आप आवाज ही सुनते हैं तो अदाकारी और अदाकार आपको याद आ जाता है। रेडियो चनार की हार्टेस्ट फ्रीक्वेंसी पर अगला सेगमेंट टेक टॉक। मैं हूं जॉग्स, धड़का दे रहा हूं।

0: ओ ठाकुर आओ, अभी तक जिंदा हो?
1: जब तक मैं जिंदा हूं, गब्बर से कहना तुम इस गांव से एक दाना भी नहीं ले जा सकते।
0: कौन रोकेगा हमें? तुम?
1: हाँ, मैं और मेरे आदमी।
0: मौत तुम्हारे सर पर खेल रही है कालिया, नजर उठाकर देख लो।

0: जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
1: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं।

करते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: कौन आया?
1: जी हाँ, वक्त चला है उस घड़ी का जिसका इंतजार हम नहीं करते, मुझे पता आप भी नहीं करते। इट्स टाइम द सीक डिपार्चर फॉर टुडे। और दोस्तों, इजाजत लेने से पहले बता दूं, आपको याद दिला दूं, आपको कुछ ही देर में आप एंजॉय करने वाले हैं शो चुनार भी। चुनार बीट्स, बीट्स ऑन रिपीट आप एंजॉय करेंगे और जय दीवा के साथ। जरा सा इंतजार, देते रहें प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काता रहो मेरे यार। जॉक्स, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च कर लीजिए OCKXEUS, आप सर्च कर सकते हैं ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो। So my dear friends and fam, till we meet again, keep your heads high, walk tall, and always remember that I love you all. Bye bye, tata, take care, masalama.

हर इंसान ने कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार किया है, मैंने, आप सब ने, तो उसी प्यार के नाम जिंदगी कुर्बान।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: ये गर्मी काफी बढ़ चुकी है, थोड़ा तापमान भी बढ़ा देते हैं। 90.4 रेडियो चुनार पर आगाज हो चुका है शो चुनार बीट्स का विद फुल ऑन वाइब एंड ट्राइब बीट्स।
1: बचपन से ही मैं लेट कमर

0: Bitch, I repeat.
1: Beats on repeat, show Chunar Beats of Enjoy Kare only on Radio Chunar 90.4 FM. So Beats on repeat to hai re sari baatein hai, masti mazak fun bhi hai, entertainment ka tools bhi hai, tadka hai, jo bole yani ki hum to bole ki yahan par kya bole, bole bole ho gaye na abhi. Dekhiye agar hum baat kare, बात ही तो करनी है. मैं तो कह रही हूँ कि अकेले मज़ा नहीं आता है, और मज़ा तब आता है जब आप शो में शामिल होकर पूरा साथ देते हैं. यानी कि शो चुनार बीट्स की गाड़ी जब निकल पड़ती है तो सवारी ऐसी है कि वो ना मज़ा आ जाए, पूरे रास्ते ऐसा लगे कि नहीं ये तो बस आग लगाने में नहीं बल्कि आग को बुझाने में और बस वो प्यार को बढ़ाने में यकीन रखते हैं. बस प्यार यूं ही बना रहे और प्यार बढ़ना चाहिए. अब प्यार है ही ऐसा जो आप और हम आपस में करते हैं, जो ये फ्रीक्वेंसी हमें जोड़ के रखती है, तो प्यार ज़्यादा बढ़ता है. एंड आई बिलीव इट कि हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा. अभी प्यार है ऐसा काफ़ी अलग, काफ़ी थलग और हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, जो हॉट से भी हॉट है. तो आप इस हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी का हिस्सा बनकर शो चुनार बीट्स में साथ देकर शामिल होकर अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं. देखिए बिजोरिया ये ट्रैक आप एंजॉय करेंगे, और उसके अलावा बैक टू बैक सॉन्ग.
2: क्या देखा जो कहा दीवाना,
1: हमने तो देखा प्यार आपका तभी दीवाने नहीं, उससे भी बढ़कर जो मोहब्बत होती है वो कर बैठे हैं. और बैक टू बैक सॉन्ग्स तो हम सुनाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं. हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 90.4 FM, जो हर दिल की धड़कन.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं।

0: अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।
1: Chinar beats with RJ Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

Beats on repeat. Yo, Chunar Beats. Ab enjoy kar rahe honi on radio Chunar 90.4 FM. We are talking about National Highway of Jammu and Kashmir and National Highway of Jammu and Kashmir. Pe both sides se vehicular movement jo hai wo rahi hai. Both sides se open hai. Movement, traffic movement. Aap aa sakte hai, ja sakte hai. Aaram se apni destination tak pahunch sakte hai. Bas be careful kyunki just kuch hi samay mein abhi road jo repair hua hai aur damage spots hai kahi kahi pe. So apna khyal rakhna hai bahut hi zyada. And aap aaram se ja sakte आ सकते हैं, आप जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं. और उसके अलावा अपने आपने सीट बेल्ट लगा के रखना है, ड्राइविंग एसओपीज़ को फॉलो करना है और गलत जगह पे ओवरटेक कभी नहीं करना है. और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, 8999-0409-04 पर कॉल कीजिए, एक व्हाट्सएप कीजिए. शो चिन्नार बीट्स का हिस्सा बन जाए.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Jerry B. Chinar Beats with Harshadeva on Radio Chinar 90.4 FM.

अनस्टॉपेबल एक छोटा सा सेगमेंट है यहाँ पे डेली डोज हर रोज आपके लिए अनकैच अजुग डेली डोज द डेली डोज चाहिए कि इंसान उस पर हमेशा सोचन कि अगर इंसान किस गलत वर्तावान पता अगर सो इंसान तेमस वापस गलत वर्तावान तेमस बासन हाय हे वन क्या कोर में एम है वर्तो में गलत मगर वो चीज़ हमने खुद ही उनके साथ स्टार्ट की होती है. सो ये इट्स अबाउट कर्मा एंड हम बोलते हैं कर्मा वापस मिलता है, जो हम बोएंगे वो हम पाएंगे. बट इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट माइंड सेट कि आपने करना ही क्यों है किसी के साथ गलत. हमेशा याद रखिए कि ये लवाना चाहे इस परिचित रह तो शेयर दो पंचड़ दो. तो वो चीज़ समझनी है ना कि आज आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, कल को उस इंसान को आपकी ज़रूरत नहीं होगी. सो बी गुड, बी हम्बल, ऑलवेज ट्राई करूँ कि हम कोशिश करें ज़िंदगी में कि इस रोज़ो असल पर इस वर्ताओ असल ताकि सो चीज़ ये वापस इस है को खुश रोजित کیاز کہ یم چیز چھ اس انسانس وقت طور چھ وقت کل چھ یم چیز اس واریہ واریہ واریہ پس بناوا. سو پس چھن روزن کے ٹرائی چھ کرن کہ ہمیشہ ہم اچھا کرے اور اچھا ہی ہمیں ملے گا. بہت تہ کیا چھو باسان تہذ رائے کیا چھ 8899900 یتھ نمبرس پہ ہوں تھی کال واٹس ایپ کرت تہ ہوں سوچن آر بی ٹوک بنت صرف تو صرف ریڈیو چنار 90.4 FM یتھ ونان چھ ریڈیو چنار 90.4 FM. ہر دلچسپ رائے

पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज

0: बनाए, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स को, चाहे फिर दिवाली हो, होली हो, ईद हो, नवरात्रि हो, क्रिसमस हो, या फिर पोंगल हो, और बहुत सारी ऐसी सेलिब्रेशंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं जिनमें मिल के भाईचारे की एक मिसाल मिलती है। और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा देश कितना खूबसूरत है, कितने सारे रंग है, हमारा कल्चर कितना खूबसूरत है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट, आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। 8999 0494 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनाव भी इसका हिस्सा बन जाए।

शो चुनाव और बीच सब एंजॉय कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन फेस्टिवल्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हमारे देश के कितने रंग हैं, चाहे फिर दिवाली की बात करें जिसे हम सेलिब्रेशन ऑफ लाइट कहते हैं, जहां पर हम ये समझते हैं कि दिया यानी कि लैंप्स, फायरवर्क्स या मिठाइयां हम बांटते हैं आपस में, या फिर होली की बात करें जो रंगों का त्यौहार होता है, या फिर हम बात करें ईद उल फितर, ईद उल अदा की, जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अल्लाह ताला के राह में बिताते, इबादत करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी देते हैं। सो अगर हम ओवरऑल बात करें, हमारे देश में इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, कुछ का तो हमें नाम भी नहीं पता है। सो यूँ ही नहीं कहते कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो हम सब इस चीज़ पे फख्र भी करते हैं और हमें पता है कि हमारा देश रंगों से भरा हुआ है, फेस्टिवल्स से भरा है, और ये देश सबसे खूबसूरत है।

अभी शो में शामिल होकर अपनी राय हम मुझ तक पहुंचा सकते हैं 8899-04904 पर टॉक कर। आप मेरे साथ कर सकते हैं, आप टेक्स्ट व्हाट्सअप करके शो का हिस्सा बन सकते हैं। शो चुनाव भी आप सुन रहे हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 91.4 FM पर।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

शो चुनाव बीट्स खत्म हो चुका है और आज के लिए बस इतना ही। अब कल मुलाकात होगी बराबर 12 बजे, तब तक आप अपना ख्याल रखना है और क्या पता कल आपको 12 बजे कोई अलग सरप्राइज मिल जाए। तो फिलहाल के लिए आपने इंतजार करना है वो सरप्राइज क्या है कल 12 बजे, और वो इंसान खुद ही बताएगा कि क्या सरप्राइज है, क्या चीजें है, यानी कि चुनाव बीट्स ही होगा पर क्या होगा सरप्राइज, सोच लीजिए आप थोड़ा सा सोच लीजिए। बट मैं तो अभी यही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। आप अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं 8899-0490 पर। शो म्यूजिक ऑन डिमांड स्टार्ट हो चुका है, फिर से बता रही हूँ, 8899-0490 टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 1800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: फजले खुदा रहमत हुई। देखिए रहमत तो है आपका और मेरा मिलना, और दो से चार रेडियो सुनार पे होता है शो हंगामा, जहाँ होता है भरपूर ड्रामा।
1: दिल पे तो अख्तियार करने दो
0: शो शुरू हो चुका है हंगामा, जहाँ इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट क्या बाजिंग है, लाइफ का ऐसा फिलोसफिकल टच मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता, और आते आते प्ले होता है कुछ खास कुछ क्रेजी।

शुरुआत करते हैं एक क्रेजी बीट के साथ। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। अभी शो शुरू हुआ है, अब ये बात कहाँ तक जाएगी, बराबर चार तक। 8899 0049 0049 तो ये क्यों असित वार्तालाप करित पनिन का आस्थान बताए। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। मैं बस यूँ कही वापस आई।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू.
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा.
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ.
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की

से मेरे बारे में वो सारे सच बेबी मैं हूँ वो जिस सबके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। देखिए, शो हंगामा है, कुछ देर पहले शुरू हुआ, जहां ड्रामा के साथ साथ इन्फॉर्मेशन, क्या ट्रेंडिंग है, रेलवे अपडेट्स, गेम ऑन टॉपिक, बहुत कुछ होता है। और अभी वक्त है कि हम बात करें कि क्या ट्रेंडिंग है, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, क्या रीपोस्ट इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, फेसबुक, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं, या लिप सिंकिंग हो रही है, डांस रील्स, या लोगों को देखने और शेयर करने में अच्छा लग रहा है। और अभी की जो जेनरेशन है, मालूम नहीं क्यों, बट उन्हें आज की जेनरेशन के गाने पसंद आते ही नहीं है, बल्कि कहते हैं कि हमारे बाप दादा के जमाने के जो गाने थे वो थे गाने, और स्पेशली जो जैज या रॉक टाइप गाने हैं वो ज्यादा पसंद आते हैं। और शायद ये भी अभी कुछ टाइम में ये भी पता चलेगा कि जो रिमिक्स हैं एक्चुअली 2000s के, वो भी काफ़ी हिट हो रहे हैं अब 10-20 साल बाद, एंड दैट्स अमेजिंग बिकॉज इट्स आर्ट, और आर्ट कभी भी अपना रूप किसी भी तरीके से दिखा सकता है। और देखिए, अभी नाजिया हसन और जुहेब हसन का जो एक ऑफिशियल वीडियो ऑडियो आया था,

इट इज़ लाइक रिलीज लिटरली 10 साल पहले, आंखें मिलाने वाले. एंड नाजिया हसन इज नोन फॉर दोज जैज़ी ट्रैक्स. तो इंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और अभी वक्त है रेलवे अपडेट का, और आज की अपडेट यही है कि जो भी लोकल सर्विसेज है वो एज पर द शेड्यूल, एज पर द समर टाइम टेबल है। आपको बस चाहिए कि आप अपना ख्याल रखें और अपना जो प्लान है वो उसी हिसाब से क्रिएट करें, उसी हिसाब से शेड्यूल करें जो समर टाइम टेबल है। और आप समर टाइम टेबल अवेल कर सकते हैं रेल वन ऑफिशियल इंडियन रेलवे ऐप्स, जहां आपको ट्रेन बिटवीन स्टेशन, लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन, अगली ट्रेन कब आएगी, कौन सी ट्रेन चली गई है, अभी कहां है, हर कोई इंफॉर्मेशन ऑन द बोर्ड। और जैसा कि हम कुछ दिनों से लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं, जो कटरा श्रीनगर स्ट्रेच है उसका जो भी असेसमेंट्स है, सेफ्टी असेसमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर असेसमेंट या टेक्निकल ग्लिचेस जो थे, वो सारे के सारे क्रॉस चेक हो चुके हैं। ट्रैक्स हैं, टनल है, द चिनाब, द वन एंड ओनली चिनाब ब्रिज, सब कुछ क्रॉस चेक हो चुका है एंड इट इज़ सेफ एंड सिक्योर फॉर ऑल ऑफ द पैसेंजर्स। और जो तीन ट्रेन्स कैंसल्ड हैं, अभी भी कैंसल्ड है, कल तक वो कैंसल्ड रहेंगे, उसके बाद उनका शेड्यूल नए से शुरू होगा, जिसके बारे में बात होगी और आप तक वो अपडेट भी पहुंचाएंगे। मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो 8899904904 इज नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। और देखिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सवारी अपनी और सामान की खुद जिम्मेदार है, तो अपने अपना ख्याल रखिए अपने सामान का एंड SOPs को फॉलो करना ना भूलें। इधर यू आर एट द रेलवे स्टेशन, जो भी आपका रेस्पेक्टिव रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे हो या ट्रेन में जब आप बैठते हैं, तब किसी को अनकम्फर्टेबल नहीं करिए। और अगर कोई आपको अनकम्फर्टेबल कर रहा है, जो रेलवे पुलिस तैनात होती है हर कोच में, वो मार्च करने आती है, राउंड करने आती है, चेक करने आती है, यू कैन कंप्लेन इट टू देम। मैं सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

जी हाँ, वक्त तो खत्म अभी हुआ नहीं है, बट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पर अभी का वक्त ये है कि हम आपको वक्त पर बताएंगे आज का टॉपिक क्या है। और आज का टॉपिक कुछ खास है, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू समथिंग आर्स एंड समथिंग लाइक अ वेरी ह्यूमनली चीज, बट जो बहुत कम देखने को मिलती है इंसानों में, बट देखने को मिलती है। और उस बारे में आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है वो कैसा रहता है, ये क्या होता है, और आज के दिन वो दिन सेलिब्रेट भी किया जाता है। बट मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ हाउ इज़ द वर्ल्ड फॉर पीपल जो अपने लेफ्ट हैंड से सारा काम करते हैं। कहते हैं ना यीशु खुश है काम करा, बट वो कुछ लोग नेचुरली लेफ्ट हैंडेड होते हैं, उनका जो डोमिनेंट हैंड होता है वो लेफ्ट वाला होता है। बट जो पूरी दुनिया है वो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी वे में राइट हैंड इंसानों के लिए बनाई गई है। तो क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है, जो छोटी छोटी यूनिक डेली एडजस्टमेंट्स है, चाहे टूल्स है या टेक्नोलॉजी हो या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो राइट हैंडेड प्रीडोमिनेंटली यूज़ करते हैं, बट कहीं ना कहीं जो लेफ्ट हैंडेड लोग हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, भले ही कम है बट है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है?

जुड़ जाइए, बन जाइए शो का हिस्सा। और आप भी बताइए कि आपका कोई ऐसा दोस्त या खुद आप, आपका जो डोमिनेंट हैंड है वो कौन सा है। मैं हूं अस्त्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: होगा तब।
1: असरा आ गई तो
0: करो हंगामा आज असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: पानी पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हाय, मैं हूँ अस्टा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन. एंड दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर दैट यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो. और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फॉर लेफ्ट हैंडेड पीपल, कैसा है उन लोगों का जो उन लोगों की जिंदगी कैसी है जिनका जो प्रोमिनेंट हैंड है, डोमिनेंट हैंड है, वो लेफ्ट हैंड है, क्योंकि दुनिया थोड़ी सी अलग उनके लिए होती है. आज हम उसी बारे में बात कर रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय, अपने विचार हम तक पहुँचाइए. मैं मास्टर सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. मैं बस यूं गई और यूं वापस आई.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: पानी पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM.

हम तो बराबर 2 बजे मिले थे और 4 बजे तक आपके साथ साथ साथ रहते हैं, बट अभी 3:30 बज चुके हैं तो अभी शुरू हो रहा है गेम ऑन, जहां मिलता है आपको लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपडेट। मैं हूं अश्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM एंड स्टे ट्यून्ड टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: The game is on. Tune into Radio Tuna 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Tuna 90.4 FM.
1: वेलकम बैक टू शो हंगामा एंड सेगमेंट गेम ऑन, जहां पे मिलेगा आज आपको एक तड़कता फड़कता स्पोर्ट्स का अपडेट। और आज का अपडेट ये है कि आर प्रज्ञा नंदा, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की कि कैसे ही इज टेकिंग अ पार्ट इन सीक्वल फील्ड कप, जो कि चेस से रिलेटेड एक कॉम्पिटिशन है, और उन्होंने एक प्लेयर को, एक कॉम्पिटिटर को डिफीट करते हुए अपनी जगह बना ली है सेकेंड राउंड में। Basically, the proud moment for India, Indian great grandmaster of chess. उन्होंने एक बहुत बड़े एक world competition, जो chess competition रहता है, उसमें अपनी जगह बना रही है in the second round. So, क्या ही खुशखबरी हो सकती है? इतनी खुशी। मैं वासरा सुत्रे, रेडियो सुना 90.4 FM. अभी भी कुछ वक्त बाकी है, बन जाइए शो का हिस्सा और सुनाइए कोई अच्छा सा किस्सा। मैं वासरा सुत्रे, रेडियो सुना।

0: Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। Let's do it together. Let us prove it together that we are responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
2: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

tornato nei Paramara Girls पर ये रेडियो चिनार पे चार तक हम बात करते हैं शो हंगामा के बारे में। तो अभी अब 4 बजने वाले हैं और आपका और मेरा साथ यहीं तक था। जाते जाते बस इतना ही बोलूंगी कि अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ क्रेजी जरूर कीजिएगा। देखिए आज इस पार कल उस पार, क्योंकि कल बराबर 2 बजे आऊंगी मैं करने आप सबको एंटरटेन ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM। आज जा रही हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट मी, दिस वाज ऑल अबाउट शो हंगामा, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

इब्तिदा उस रब जलील के नाम से जो सारे दिलों के भेद खूब जानता है, हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार मोहब्बत और खलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। आपने ट्यून किया है नॉर्थ कश्मीर का इकलौता सुपर डुपर रेडियो स्टेशन 90.4 एफएम रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन, और 90.4 एफएम पे हो गया है शुरू सफर जिसका नाम है दिल की बात। साहिल के साथ मैं हूं साहिल मुजफ्फर, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे शो को। इफ यू आर ड्राइविंग राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम, मेक श्योर कि आप ट्रैफिक रूल्स को एसओपीज को फॉलो करते करते अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके लाउड वंस आपका इंतजार कर रहे हैं। एंड मोर ओवर, आराम से गाड़ी चलाएंगे, सीट बेल्ट लगा के रखिएगा, रफ्तार पे काबू रखिए, वॉल्यूम रेडियो सेट का थोड़ा अप कीजिए, आप आराम से हमारे संग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और इस बात का ख्याल रखें कि अगर रास्ते में आपको एक एम्बुलेंस दिखाई दे तो उसको सबसे पहले जगह दीजिए। कोई बड़ा बुजुर्ग रोड क्रॉस कर रहा है, आराम से उनको जाने दीजिए, आपको कोई जल्दी नहीं है। 10-15 मिनट पहले अपनी डेस्टिनेशन से आप शुरू कीजिए, जहां पे आपको निकलना है या जहां पे आपको पहुंचना है। मेक श्योर कि हम एक जिम्मेदार शहरी की तरह

रोजमर्रा के काम अंजाम दें। खैर बातें तो ढेर सारी करनी है, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट इज लाइंड फॉर यू इन दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। और एक टॉपिक पे होगी बात, आपको भी इस शो में हम करेंगे शामिल और आपकी आवाज पहुंचाएंगे वहां वहां तक जहां जहां तक जाती है रेडियो चिनार की आवाज। फिलहाल यू गाइस फास्टन योर सीट बेल्ट बिकॉज द फ्लाइट ऑफ एंटरटेनमेंट इज ऑल सेट टू टेक ऑफ फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ रेडियो चिनार विद दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स इट्स जबरा फैन एंथम कमिंग योर वे। आरजे साहिल मुजफ्फर लौट के आऊंगा। एंजॉय द ट्रैक।

जी हाँ, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। लाइफ में अप एंड डाउन चैलेंजेस आते रहते हैं, बस जो कहते हैं ना, जैसे आमिर खान ने कहा ऑल इज वेल ऑल इज वेल, ऐसे ही आप भी कहिए, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। यू आर ट्यून्ड इन द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 FM रेडियो चनार, हर दिल की धड़कन।

ऑलराइट, अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया और आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं दिल की बात साहिल के साथ, और खूबसूरत सी शाम में रेडियो चिनार के संग आप हैं। और जब कहते हैं ना कि बाकी सब फर्स्ट क्लास है, तो मेरे माइंड में ये आया कि वो कहते हैं ना कि जुब और जहां, और जब हमारी सेहत अच्छी हो ना तो फिर हर एक चीज़ फर्स्ट क्लास लगती है। आज हम हेल्थ और फिटनेस के हवाले से कर रहे हैं बात अपने शो पे। आप क्या सोचते हैं समझते हैं कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, क्या करना चाहिए हमें फिट रहने के लिए, और आज की इस भागम भाग की जिंदगी में क्या हमें वक्त मिलता है अपने लिए, बताइए। उठाइए मोबाइल फोन 8899 0494 8899 0494 पे कॉल करें, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज करें, या बन जाइए आप सोशल मीडिया पे हमारे शो का हिस्सा। DM me, जी हाँ, RJ साहिल मुजफ्फर फेसबुक, इंस्टा और एक्स पे बताइए अपने दिल की वाणी। वादा करता हूँ मैं आपसे कि आपकी बात पहुंचाऊंगा वहां वहां तक जहां जहां तक जाती है रेडियो चिनार की आवाज़। आजकल हम इतने बिजी हैं कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। यू नो, लॉट ऑफ पीपल आर सो मच ऑक्यूपाइड अपने काम के साथ, अपनी पर्सनल लाइफ के साथ, और अपने जी हाँ मोबाइल फोन में इतने घुसे रहते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता है। बस हम गाड़ियों में आते जाते हैं, सेहत का हमें ध्यान ही नहीं है, उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है, उसकी वजह से जो यू नो हेल्थ एलिमेंट्स है अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम बात करें वो बढ़ रहे हैं। हमारा जो फूड हैबिट्स हैं वो हमें चेंज करने हैं, हमारे उठना बैठना चलना, और हम इतने यू नो महव हो गए हैं अपने काम काज में कि अब

हम जल्दी जल्दी पहुंचना चाहते हैं, घर भी जल्दी जाते हैं, ऑफिस भी जल्दी जाना है, वापस भी जल्दी आना है, और यू नो देर आर सो मेनी थिंग्स, पीपल आर ऑक्यूपाइड इन अ वे कि हम अपने आप से बातें करना ही भूल गए, अपनी सेहत का ध्यान रखना ही भूल गए। वो कहाँ वो ज़माना था जब सुबह सवेरे लोग उठते थे, वर्जिश करते थे, मॉर्निंग वॉक पे जाते थे और बैलेंस्ड डाइट खाते थे, शाम का जल्दी जल्दी खाना जल्दी खाते थे, रात को जल्दी सोते थे, सुबह लेट उठने के बजाय जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। लेकिन आज पूरा उल्टा हो गया है, लोग रात को देर से सोते हैं, फिर सुबह दिन की जो शुरुआत है वो बहुत देर हो जाती है, फिर उस बागम बाग में ऑफिस जल्दी पहुँचना है, वहाँ पर काम करना है, फिर थकान होती है, देर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड, और जिसकी वजह से हमारा जो हेल्थ है, हमारी जो फिटनेस है, हमारा जो यू नो फिजिकल फिटनेस है, मेंटल हेल्थ है, सब पे यू नो बुरे असरात पड़ रहे हैं। और इस पे हमें बात करने की ज़रूरत है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट, एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट, वी हैव टू टॉक टू द हेल्थ एक्सपर्ट्स, और हमें हेल्थ एक्सपर्ट से, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मशवरा करना है, और अपनी मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप बताइए हमें। फिलहाल यहाँ पे सेनोरिटा कुछ कह रही है आपसे, और देखते हैं सेनोरिटा क्या कह रही है। सेनोरिटा का जी हाँ, ये आप अंदाज एंजॉय कीजिए, मैं हूँ साहिल मुजफ्फर, लौट के आऊँगा, कहीं जाइएगा नहीं। हर दिल की धड़कन रेडियो चनार।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ।

छोरा गंगा किनारे वाला खाई के पान बना रसो वाला यू आर ट्यून्ड इन टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी 90.4 एफएम रेडियो चिनार। कुछ यादें ताजा हो जाती है क्योंकि जब भी ये गाना हम सुनते हैं या आप तक पहुंचाते हैं तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन का वो डायलॉग गया था। वे डॉन आई थी अमिताभ बच्चन की, तब ये गाना पूरा सर चढ़ के बोल रहा था। फिर इस मूवी को ही रिवाइव किया गया और इस गाने को भी रिवाइव कर दिया गया। और वो कहते हैं ना कि कुछ गाने ऐसे होते हैं उसको आप किसी भी जॉनरा में डाल दे, किसी भी म्यूजिक कॉम्पोजिशन में उसको प्लस माइनस ऐड करे, इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करे, उसको रिवाइव करे, वो दिल की धड़कनों को तेज़ करता है और ये गाना ऐसा है। और आज हम अपने शो दिल की बात साहिल के साथ पे बात कर रहे हैं हेल्थ और फिटनेस के हवाले से। हेल्थ और फिटनेस की जी भैया जब हम बात करते हैं ना तो आप हॉस्पिटल्स में कभी देखे कितने लोग परेशान रहते हैं। और फिर जब हमने भी कभी डॉक्टर से बात किया, कल भी आपने एक स्पेशल इंटरव्यू सुना हमारे यहाँ से एक डॉक्टर के साथ, डॉक्टर शाहनवीद के साथ, तो उन्होंने भी कहा कि जो हम लोगों का आज की डेट में लाइफस्टाइल है, हम गाड़ियों में ज़्यादा घूमते हैं, हम वॉक नहीं करते हैं, हम चलते बहुत कम हैं, हम जंक फूड पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, हम बैलेंस्ड डाइट नहीं खाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही बिगड़ गया है। एंड दैट्स द रीज़न कि इतने सारे हेल्थ एलिमेंट्स हैं, लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में बहुत भीड़ रहती है और कभी कभी ऐसे बीमारियाँ भी जन्म लेती है कि इंसान को पता ही नहीं होता है कि वो कब सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेज तक पहुँच जाता है और अल्टीमेटली उनकी जान चली जाती है और पीछे एक दुनिया वीरान हो जाती है। तो इससे पहले कि वो नौबत किसी की ज़िंदगी में आए, इट्स हाई टाइम कि सब लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज वो कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ। एब्सोल्युटली अगर सेहत हमारे पास है, हेल्थ है हमारे पास, वी आर फिट, देन वी कैन डू वंडर्स। और आज की डेट में जो एडल्ट्रेशन है, फूड एडल्ट्रेशन, उसका भी हमें ध्यान रखना है कि वो हमारी ज़िंदगी पे कितना एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है। इट्स बेटर हम जो घर में जो खाना बनाते हैं, घर में जो माँ के हाथ से या हमारी जो घर में बहन बेटियां हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, वो मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ खाना बनाते हैं, परोसते हैं, तो उसमें हाइजीन होता है, उसमें कोई ऐसा टेस्टिंग पाउडर या बाकी जो चीज़ें होती है वो मोहब्बत के बदले जो डाली जाती है ताकि इसमें मज़ा आ जाए, वो मिसिंग रहती है। और उस की वजह से हमारा जो घर का खाना, इट्स हेल्दी फूड, तो जंक फूड को अवॉइड कर दीजिए। और ख़ासकर जो बच्चे हैं हमारे, और स्कूल्स में भी अक्सर हम देख रहे हैं कि टीचर्स भी और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि बच्चों को जंक फूड से दूर रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं कि अर्ली लाइफ में छोटे बच्चे हैं 7, 8, 9, 10, 15 साल के, उनमें भी कुछ ऐसी डिजीज़ हो गई हैं कि फिर पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। आप क्या कहना चाहते हैं हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से, बताइए हमें 8899-04904 पे कॉल, व्हाट्सअप, टेक्स्ट मैसेज करके और शो का बन जाइए हिस्सा। फिलहाल बातों को थोड़ा सा देते हैं विराम और ये खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं, इट्स रोलिंग अप इन द बैकग्राउंड। अभी एंजॉय करेंगे क्योंकि ये है मेरे महबूब, मेरे सनम। हाय हाय, शुक्रिया, मेहरबानी करम, साहिल नाम है मेरा, लौट के आऊँगा।

जी हाँ, आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं। लाइव शो का नाम है दिल की बात साहिल के साथ, एंड आई एम होपफुल कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। अभी थोड़े से बादल छाए हैं और शाम होते होते मौसम सुहाना हल्का सा हो जाता है। हालांकि आजकल बहुत गर्मी रहती है दिन भर, और कुछ एरियाज में इवनिंग आवर्स में बारिश होती है, तेज हवाएं चलती है, और पिछले एक डेढ़ महीने से मौसम किस करवट बैठेगा भैया

ही नहीं चलता है। लेकिन रेडियो चिनार एक ही करवट बैठे हुए हैं, वो है अपने लिसनर्स के साथ जुड़ना, उनको एंटरटेन करना, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और खूबसूरत से गाने चलाना। और इन द मीन टाइम बात करते हैं हम डिफरेंट टॉपिक्स पे। आज के शो का जो थीम है हमारा, आज के शो में जो हम बात कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से हो रही है बात, और हेल्थ इज़ वेल्थ, ये हम सब जानते हैं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बागम बाग में चूक कर रहे हैं और अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी है अपना ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। और आप भी कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो पहुँचाइए 8899-04-904। फिलहाल एक और गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ और आई एम श्योर कि यू विल लव दिस सॉन्ग, क्योंकि ये आपने अपने ज़माने में हर एक ही जुबान पे छाए था। वो कहते हैं ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। टाइटल ट्रैक कमिंग योर वे।

ऑलराइट गाइस, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, मेरे प्यार का रस, जी हाँ मेरे मखना, ये जो ट्रैक आप अभी सुन रहे हैं इससे आपको याद आ रही होगी जब गोविंदा और बिग बी यानी अमिताभ बच्चन साथ में आए थे। ये मूवी बहुत चली थी और लोगों ने इसके म्यूजिक को बहुत पसंद किया, तो हमने सोचा आज जाते जाते इस मूवी के एक दो गाने सुनाकर आपकी यादों को ताजा किया जाए। और इन द मीन टाइम घड़ी ने किया इशारा, टाइम टू रैप अप द शो, घर जाने का वक्त आ गया है। लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि म्यूजिक एंटरटेनमेंट का तड़का यहाँ पे मिलता है हर रोज, और ये डोज आपको मिलेगा ओनली ऑन रेडियो चनार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बैक टू बैक ट्रैक्स आपके लिए हम प्ले करेंगे, लेकिन 7 बजे आपकी शाम का सुहाना सफर, सुहानी शाम आप तक पहुंचाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, कल मिलेंगे। टिल द टाइम वी मीट अगेन, लेट्स सेपरेट सम लव, सेपरेट सम स्माइल्स। दिस इज साहिल मुजफ्फर सेइंग यू टाटा, बाय बाय, टेक केयर, मा सलामा।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: ओ मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
2: कुछ और मंगला ना, मोटरसाइकिल लो।
3: दिला दीजिए ना।

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society.

0: Let us say hi to life and bye to drugs.
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Jeremy. Chinar Beats with Harsha Diva. Radio Chinar 90.4 FM.

ओके तुम्हारी मैं जाऊं। लगता है रूम में रहेगी।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: पानी पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with Dhar Chediba, only on Radio Chinar 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई

कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्यूनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कॉपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with Dhar Chediba, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप

विजिट करें। यात्रा से पहले मदिरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: Sorry, me. Chinar Beats with Harsha Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
2: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: पड़ोसियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सुना
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: कभी यादें महक जाती
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सुनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम।
1: दबी यादें

0: महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सुना
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सुना
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करारा जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: モニーカ
1: ー。वो आ गया, देखो, देखो वो आ गया।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

इधर चैन आराम राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं देखो ना दर्द फीस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार एक बार लेकिन एक बार।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: सवरिया, ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया,
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया,
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया, ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: फोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गया।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की
0: मुश्किल

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: ले आते हैं
1: मेरी जूती से।
0: जूता पॉलिश करेगा, आह जूता पॉलिश करेगा, लेकिन तुम पर मरेगा। चाहे ये जमाना कहे हमको दिव...

0: दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ हाँ हा, छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हा, इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।